0: एक मिनट जिंदा की मचाता है।
1: Montreal Center, good morning. World Express 009, heavy flexible 350, approaching Quebec.
0: World Express 009, heavy flexible.